0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चे मर जाओ।

0: कहां हो मेरी रानी? अरे मैं लेके आया हूं तेरे लिए मोहब्बत की बिरयानी।
1: ओ ओ कौन? असरानी।
0: कदर मुरी ना जानी, अरे सरगम तीन तानी, मैं असरानी नहीं फरहाद हूँ फरहाद, आशिक ना मुराद, अपने अब्बा का नाम तो नहीं याद, हाँ मियां मजनू है मेरे उस्ताद, अरे सुन ले मेरी फरियाद, मुझे दे मुझे दे मुझे दे नींबू का अचार और दे तीखा तीखा प्यार।
1: अरे ओ मजनू के चेले, कहीं जाकर बेच केले, तू अपनी लैला को पहाड़ों में ढूंढ, घने झाड़ों में ढूंढ, वीरानों में ढूंढ, रेगिस्तानों में ढूंढ।
0: But you are my Laila and I am your Chaila.
1: Oh, अरे ओ Chaila, ना मैंने तुझे कभी देखा और ना है मेरे हाथ में तेरी रेखा।
0: अच्छा।

तालियों के शोर में एक गुमसुम खामोशी भी थी, एक ऐसी खामोशी जो घटाओं के बरसने से पहले सुनाई देती है। आरती की छलकी हुई आंखों में वो खामोशी यूं ठहर गई थी जैसे कह रही हो, अब के न सावन बरसे, अब के बरस तो बरसेंगी अखियां, अब के न सावन बरसे।

0: चिट्ठा छपिया नहीं सी गया मैं की करता
1: यही तो अधिकार है ये सारा पंजाबी जब संसार में आया तो बिना टिकट आया और जब संसार से चला जाएगा तो एकदम से बिना टिकट
2: अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि पंजाबी बिना टिकट आया था
0: खुलती हो गया
2: बंगाली कैसे बिना
3: देख रहे हो बंगू पंजाब बंगाली लड़ रहा है बंगाली मद्रासी से मद्रासी मराठी से मराठी गुजराती से
4: मगर दादा हाँ जानते हो दरअसल कौन किससे लड़ रहा है हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी से
3: कमाल है भाई लोगों ने जेल को भी हिंदुस्तान बना दिया

सुनने वालों एक मजे की बात सुनिए। एक रोमांटिक पिक्चर देखकर मैं घर आ रहा था। रास्ते में आरडी बर्मन का एक गाना गा रहा था कि अचानक वो मिल गई।

0: देश में फैले हुए घटा टोप अंधियारे को दूर करो, गरीबी हटाओ, रोतों को हंसाओ, भूखों और नंगों को गले से लगाओ, आओ आओ देश की सेवा में तन मन धन को अर्पण कर दो।
1: धन हो, धन हो।

0: ये खतरे का सिग्नल कहां से चला रहा है?
1: हाय रे, मैं सदके जावा चश्मे बद्दूर लाल छड़ी मैदान खड़ी।
2: अच्छी लग रही हूँ ना?
1: हाँ बिल्कुल दुल्हन जैसी।
2: फिर बोल, कब बजे की शहनाई?
1: अरे नेक काम में देर कैसी, बोलो तो अभी बजवा देता हूँ। अरे जम्बू, दुल्हन पसंद आई?
3: क्या बात है, अरे बहुत पसंद।
1: हाँ तो खड़े खड़े देख क्या रहा, जाके लिया सेहरा?
3: हाँ अभी लाया।
2: अच्छा।
1: और सुन, कपड़े भी पहन कर आना, शादी में क्या दूल्हा नंगा आता है, है?
2: क्या जम्बू, मेरा दूल्हा?
1: और क्या, शुक्र कर वो तो राजी हो गया।
2: चिड़ी के चौके मेरा मजाक उड़ाता है, मैं तेरे साथ कभी नहीं।
4: देख बन्नो, कोई जाता है नाम से, कोई जाता है दाम से,